0: पीछे मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी रिलेशन सुन रहे हैं ठीक हो गए, ठीक है, हम जो भी सुनो जो छोड़ ना लेके आंदा मैं पूछता हाँ मेरा हैगा तुम दसो जो कहो छोड़ देना, ठीक है, ऐसा मैं काम कर दा, बहुत कृपा महाराज जी। देखो लोग देखो ऐसा ना सा काम नवी यह जहा है ना बहुत रब न कनेक्टेड है, ठीक है, असी जे लालच आ गया ना ओ डॉक्टर तो कद भी तरक्की नहीं कर सकता, मेरी ये सोच है। किसी भी तरह किसी नु भी कोई भी प्रॉब्लम हैगी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पेट का इशू है, हिजम है, एलर्जी है, कोई डिप्रेशन हो गया, आर्थराइटिस हैगी है, कोई स्किन का इशू है, स्लीप एपनिया, ऑटोमोबाइल, जरूर मेरा नंबर याद रखो और मेरा केटी होम्योपैथी तुम हर जगह मेरी वीडियो देख सकते हो, तुम जाओ इंस्टाग्राम से जाओ, टिकटॉक से जाओ, यूट्यूब से जाओ, तुम देख सकते हो और बहुत जो कोई भी इशू हैगा जरूर मैं याद रखो और अपने दोस्त मित्रों नंबर दो, मैं जरूर थोड़ी हेल्प करूंगा। बस इन्ना बहुत है, मेरी क्लिनिक 20 मैरिटाइम टूरे बिलवाड यूनियन नंबर 2 होम डिपो वाला प्लाजा 647-818-0055-647-818-0055 कदे भी कॉल करके आ सकते हो और जे थोड़े बेनिफिट ने अपने बेनिफिट भी चेक कर लो, बेनिफिट भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू नवी टैंड,
1: थैंक यू सर। नंबर एक एक है 647-818-0055 तलविंदर बाई जी का नंबर देना। तलविंदर भाजी इंसान बहुत ही कमाल दे ने, तलविंदर जी नूं एक बार फोन कर लो। टी एस सी कंस्ट्रक्शन बहुत ही वधिया टीम है, कॉन्क्रीट खास तौर पर इंटरलॉकिंग के माहर ने, इन्हें कह दियो भाजी पहला फोटो भेजो की काम तुसी कीता, जदों इन्हां दा काम देख लिया तुसी कहोगे भाजी हायर कर लिया थोनू से प्लीज आके साडे भी काम करके जाओ। सो 416-930-4238 नंबर है, 416-930-4238 416-930-4238 ते कॉल कर लो। उस तो इलावा नंबर वन मूविंग कंपनी अपनी शहर की एच के मूवर्स नू फोन करो, मूव कर रहे हो रिलायबल ट्रस्टवर्दी टीम लभ रहे हो, एच के मूवर्स 416-524-6704 416-524-6704 एच के मूवर्स नू कॉल तुसी जरूर करो। ते गाना लाने कुर्ता पजामा, कीदा कुर्ता पजामा वो तुसी देखो, बट ईगल ट्रक अलाइनमेंट एंड टायर सेंटर, ट्रकां दे नवें टायर पवाने आ, ट्रक दी अलाइनमेंट करवानी है, ट्रक दा ऑयल चेंज करवाना, बहुत ही वधिया खास डिस्काउंट लेना। नवी लोकेशन खोली है ईगल ट्रक टायर एंड अलाइनमेंट सेंटर ने मिल्टन 401 तो उत्तर अनुसार 10874 स्टील्स एवन्यू ईस्ट मिल्टन। मनु जी नूं कॉल करो, कहिंदे डिस्काउंट पक्का सारे लई जिहड़े नाम लैणगे पंजाबी लहरां दा 647-234-6293 647-234-6293 कुर्ते पजामे की भी रीस कोई नहीं।

0: इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरीए, सतगुरु होए दयाल न कबहूं झूरीए, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत ते चढ़दी कला वाली सवेर दे विच, खूबसूरत ते चढ़दी कला रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू।

0: तो उसका क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दें संतोष, थोड़ा क्वेश्चन की सीखा
1: जी। बिल्कुल, ऐसा दे केरी चीज है जेडी की तुसी ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते।
0: हां नहीं खा सकते
1: जी,
0: ठीक है
1: जी।
0: ते जेडी दो चीजें ने, ठीक है, जेडी नहीं तुसी कर सकते। दूसरा हैगा एक मुर्गी अद्धा अंडा एक दिन च दंदी है, दस मुर्गियां दस दिन च किन्ने अंडे देंगे? 905 673 33 37।

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600
1: की तुसी कनाडा विच स्टूडेंट वीजा दे उत्ते वर्क परमिट ते आए होए हो या तुसी कैनेडियन सिटीजन या पीआर होल्डर हो अपने दोस्त रिश्तेदार ते मित्रां नु अगर विजिटर या टूरिस्ट वीजा ते कनाडा बुलाना चाहुंदे हो ता परख्या ते भरोसे वाला नाम पंजाब विच सब तो वध सक्सेस रेट दे नाल ईजी वीजा विजिटर वीजा कनाडा दा लगवा के दे रहे हन वधेरे जानकारी लई ईजी वीजा 9592200200 9592200200 ते आज ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ और स्टूडियो नंबर 905 673 3333

0: करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग
1: 0609-416-6770609।
2: इंडियन फ्रूट लैंड, वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
3: ले इको जगह तू किथे सारा कुछ मिलदा। दो चीजां लई एक जगह रुको, फिर अगलियां दो दी दूजी जगह रुको।
2: इंडियन फ्रूट लैंड है सच्ची, वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस ते। आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूट लैंड दी सतवीं लोकेशन भी खुल गई है, ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे, नियर होरांथ्रो स्ट्रीट, ब्रैम्पटन।
4: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave.

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नूं जोड़ के रखिए। अमरप्रीत जी स्टूडियो च आ चुके ने, उन्हां नाल वी गलबात करदे हां, देखदे हां साडे भविख लई तुहाडे बच्चिआं दी परवरिश लई भविख लई की सलाह मशवरा देणगे। छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 5:40 ते आया, 8:49 ते चले जाना। मामा चांसल शाम नूं 7:46 ते आएगा, 4:13 ते चले जाना। अज दा तापमान 27-28 डिग्री तक जाएगा, मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा। कल नूं सूरज चमकेगा तापमान 24 डिग्री, संडे नूं सूरज चमकेगा 23 डिग्री, मंडे नूं सूरज चमकेगा 22 डिग्री, उपरा उपर नूं जां थल्ले नूं गाउना, ट्यूजडे सूरज चमकेगा 21 डिग्री, बुधवार नूं सूरज चमकेगा 22 डिग्री तापमान रहणगे। स्पोर्ट्स ब्लू जे वाले कल चौथी गेम लगातार जिते, 2-1 दे फर्क नाल ओरियल नूं हराया। ते क्रिकेट दा जिहड़ा मैच आ उहदी वी गल सुणा दईए, उहदे विच राजस्थान रॉयल वालिआं ने 214 रन बनाए ते 6 विकटां ते गुजरातीआं ने, जे खेलणा देखदे आ की बणदा। उधर कहिंदे जी मूसे वाले ने टहिणा ठोकता गाने च, कल परसों दे ने मकड़ ठोकता, हुण इक कोई की आ रवनीत बिट्टू ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਠੋਕਤਾ, ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਬਈ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फिर नंबर लै गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 किलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਰਾ, ਆਟੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਫੋਰ ਆਟੋ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6472411309-6472413-0 ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TFSA, RRSP ਜਾਂ RESP ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਰਾਈਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6472411309 6472411309।
5: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection Upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Ja tusi visa services Nepal de vichu puri family vacation Upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
6: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
7: 416-570-0157। मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।

0: बिल्कुल जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ, स्पेशली जरा जी सुदेश कुमारी जी, क्योंकि इन्ना प्यारा जरा जी लाइव से भी गाँव है और फुल ऑन जरा जी इंटरटेन करते हैं। सो इदा का कुछ माहौल मैनू दिख रहा है कि किदा का जरा जी सोहना सोहना जरा जी फुल ऑन मस्ती वाला माहौल तेन 21 जून न पीएसएन कन्वेंशन सेंटर देखने को मिलेगा। देखो जी, तिया जो सुखी निजर वाली तिया का जो नाम आ जाता है ना, तो फिर मेनू लगता है कि कोई डाउट नहीं रह जाता, पता है कि ठीक है सिंगर बेस्ट तो बेस्ट ही आने। सो हम मैनू भी बड़ा टाइम जरा जी हो गया इस टीम के, सो मैं ऑलवेज बड़ी जी जी एक्साइटमेंट रही है। थोड़ा जी लेट जरूर हो गए, बट लेट हाँ पर कोई गल नहीं, ऑलवेज विल ब्रिंग द बेस्ट। सो बिल्कुल जी 9057990999 ते गलबात करके तुसी जेड़ा जी टिकट्स दा लिंक साढ़े तो ले सकते हैं। और नाल दी नाल जिथे की फ्राइडे हैगा, असी मुकेश चौहान जी दे नाल भी थोड़ी जी तुहाडी गलबात करावांगे। मैं थोड़ा जिहा उहनां दे बारे जरूर दसदा। मुकेश चौहान फ्रॉम मोरगेज डिलीजेंट, ये तुहाडा हा साथ किदां दे सकदे जे तुसी रीफाइनेंस करवाउणा आ, या तुसी जेड़ा जी मंथली मोरगेज पेमेंट मिस कर दित्ती हैगी आ, या तुहाडे कोल कम नहीं सीगे तां तुहानूं जेड़ा जी क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स इस टाइम तुहाडे सिर ते है। सो बिल्कुल तुसीं जिहड़ी है जी उन्हां दे नाल गलबात कर सकदे आ। नाल दी नाल जिहड़ा है जी ओह कहिंदे जे तुसीं 55+ हैगे आ और तुसीं मोर्गेज तां वी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तुहानूं जिहड़ा है जी सोल्यूशन ओह होम इक्विटी या लाइन ऑफ क्रेडिट दे विच करके दे सकदे आ। सो जाने कि कोई भी प्रॉब्लम है जो तुहाडा घर पावर ऑफ सेल दे वल जा रहा है या मिसिंग मोर्गेज पेमेंट है तां वी हो सकदी आ। बिल्कुल जी कॉल आ रही हैगी आ, आपां तुहाडी कॉल जरूर थोड़ी देर दे विच लैणे आ, मैनूं थोड़ा जिहा समय दित्ता जावे। सो मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: हेलो जी, सत श्री अकाल किरण जी, की हाल है जी तुम्हारा?
0: हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
1: जबरदस्त जबरदस्त, हैप्पी फ्राइडे।
0: बिल्कुल जी हैप्पी फ्राइडे। एंड एक मैं लिसनर्स नु दस दवा जी कि कॉल्स आ रही है, प्लीज थोड़ा जी समय दिता जाए क्योंकि लाइन इस टाइम बिजी है, तो मैं लाइन नहीं जड़ी जी पिक कर सकती, या तो तुसी जड़ी जी होल्ड कर लो। सो बिल्कुल मुकेश जी सॉरी टू बिकॉज कॉल्स आर सो मेनी कॉल्स आर कमिंग,
1: दैट्स ओके। बिल्कुल
0: या या, सो बिल्कुल जी मुकेश जी, सो जहां पे मैंने बताया कि ठीक है मोर्गेज की अगर किसी को हेल्प चाहिए, इवन यूर फर्स्ट टाइम होम बायर, या आप स्पेशली प्रॉब्लम्स क्या आती है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, हम लोग ऑलवेज बात करते हैं कि ठीक है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी स्पेशली मोर्गेज में बहुत सारी चीजें होती है जो उन्हें ध्यान रखनी होती है। सो हाउ यू कैन हेल्प देम, पहले तो ये सवाल बताओ।
1: अच्छा चलें, पहले तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में भी बात करते हैं और हम सब ये भी बता देते हैं, मुझे पता है कि हमारे लिस्टनर ज्यादातर ट्रक ड्राइवर हैं और इमिग्रेशन कंपनी से और ज्यादा अपना ही कारोबार करते हैं, तो आपने मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड आपने ये क्वेश्चन किया सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो मैं थोड़ी सी ब्रिज फाइनेंसिंग के बारे में बताता हूँ, फिर साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड से रिलेटेड भी करता हूँ कि कैसे उनको हेल्प करेंगी हमारी सर्विसेज, राइट। तो मैं मिसिसागा में होता हूँ, राइट, मिसिसागा रोड और जो है डेरी थे। देखिए ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है, ब्रिज फाइनेंसिंग में ये होता है, अभी देखिए बाय एंड सेल की ट्रांजैक्शन मार्केट में बढ़ रही है, राइट, परचेज ज्यादा हो रही है, सेल हो के कम हो रही है, बट हो रही है, राइट, ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो रही। अगर कोई होम ओनर पहले घर खरीदता है और बाद में बेचता है, मतलब पैसे बेच के ही तो आने वाले हैं ना किरण जी, राइट भाई, बेच में बात करेगा वो एक महीने के बाद भी बिक सकता है, दो महीने के बाद भी, तीन महीने के बाद भी, चार महीने के बाद तक, फोर मंथ्स तक का टाइम मिलेगा आपको अगर वो करता है। इस दौरान में जो फाइनेंसिंग बैंक देगा उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग।
0: अच्छा जी,
1: मतलब एग्जाम्पल है अपना घर से आपको 5 लाख की इक्विटी मिल रही है, मगर और घर आपको आप घर बेचोगे 4 महीने के बाद, एग्जाम्पल है आप बेचोगे सितंबर में, मगर घर खरीदना अभी आपको, तो उस अभी से लेकर जून 1 से लेकर सितंबर 1 तक के दरमियान को आपको लोन मिलेगा जिसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। घर खरीद लें, घर मूव हो जाए, शिफ्ट हो जाए, बच्चों की स्कूलिंग शुरू होने वाली है, कमिटमेंट है, पता है क्योंकि आपको राइट फ्रॉम सितंबर से तो स्कूलिंग चालू हो जाएगी वापस, राइट, मार्च ब्रेक के बाद, अपना समर ब्रेक के बाद। तो इसमें दो ही कंडीशन है, एक तो पहली कंडीशन आपकी ये है कि दोनों के सेल एंड परचेस अग्रीमेंट फॉर्म होने चाहिए, आपका जो खरीद रहे हैं वो भी और जो बेच रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं कि आपने घर खरीद लिया और बेचने की आपने मतलब कोई आपकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है आपके पास, रियल है ना। दूसरी बात, दूसरी चीजें होनी चाहिए कि आपकी पूरी प्रोफाइल 100% जो पूरी फाइल होनी चाहिए हमारे पास, तो उसके हिसाब से मैं आपको पूरी चीजें बता दूंगा हाउ गोना वर्क, एंड आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए और तो डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू। दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजेंट, नंबर आप कर सकते हो मुझे कॉल 647-512-7000 647-512-7000।
0: बिल्कुल मुकेश जी, नंबर मैं आपका एक बार जरूर बता देती हूँ, नंबर हैगा 647-512-7000 ते तुसी जेड़े जी मुकेश जी दे नाल गलबात कर सकते हैं। सो मुकेश जी, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हाउ इट हेल्प्स टू गो टू अ बिगर हाउस विद अ लिमिटेड डाउन पेमेंट।
1: बिल्कुल लिमिटेड डाउन पेमेंट। और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात से शुरू करता हूँ जो आपने सवाल किया। देखें, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर है, ट्रक ड्राइवर है, इमिग्रेशन बिजनेस में है या कुछ भी रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर है, ठीक है, आपके पास लिमिटेड डाउन पेमेंट है, 10% डाउन पेमेंट है। एग्जाम्पल, आप कॉन्डो में रहते हो, डिटैच में जाना चाहते हो, या डिटैच से आप बड़े घर में जाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल है। इसकी दो कंडीशन है, आपका घर 1.5 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा जी।
1: दूसरी बात है, क्रेडिट स्कोर 618 अबव होना चाहिए।
0: ठीक है जी।
1: अगर आप दो कंडीशन है, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड वाले किरण जी पैसे बढ़ाते हैं मगर डिक्लेयर कम करते हैं बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेंसेस, है ना। तो उसकी वजह से प्रोग्राम बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स है मगर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए स्पेशल प्रोग्राम है। 10% से घर, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर भी हैं, आप अपना घर अपग्रेड भी करना चाहते हैं, आपका जो क्रेडिट स्कोर इस वाली कंडीशन में आपका 680 अबव होना चाहिए इस वाली कंडीशन में, राइट। तो याद रखिएगा, अगर 20% है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कम है तो मुझसे और इस सिचुएशन में जहां पर बहुत ज्यादा बाय एंड सेल हो रही है, मेरी एडवाइस ये है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन अप्रूव करवाए, अपनी प्री अप्रूवल लेटर लें और जो है अपनी मॉर्गेज पता करें कि कितनी मॉर्गेज मिल सकते हैं। जो मिस्टेक, जो गलतियां हमने 21-22 में की है, लेट्स डू नॉट रिपीट, है ना। तो आपका घर आपके फाइनेंस के हिसाब से मिले वो ज्यादा बेटर है। गिव मी अ कॉल, आई एम हियर टू हेल्प यू।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल। नंबर एक बार फिर 647-512-7000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅਬ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ, ਜਬ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸੇ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗ ਕਿ ਆਪ ਕੈਸੇ ਉਨਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ।
1: देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और मैं आपको यही आंसर दूंगा कि अगर किसी की मॉर्गेज, किसी ने 3 महीने मॉर्गेज नहीं पे की, बैंक तो मॉर्गेज नहीं करेगा आपसे, राइट। क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस की एक अलग बात है, आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस कर दी अलग बात है, बैंक की मॉर्गेज मिस करने पर बैंक की फाइनेंसिंग भरना मुश्किल हो जाती है। प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पे किया, CRADS आपने नहीं पे किए, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बैड क्रेडिट है, इनकम आप कम डिक्लेयर करते हैं, तो उस सूरत में प्राइवेट फाइनेंसिंग हेल्प करती है। अच्छा, प्राइवेट वर्ड आते ही लोग डर जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, फी बहुत ज्यादा होगी, मगर आपको मैं एक बात बताता चलूं, अगर यहाँ से आप मॉन्ट्रियल जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी को वहीं छोड़ दोगे क्या? तभी नहीं छोड़ोगे, यू हैव टू रीच टू द डेस्टिनेशन। प्राइवेट फाइनेंसिंग इज द सोल्यूशन टेम्पररी। 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आप प्राइवेट फाइनेंसिंग लेते हो, देखिए घर पावर ऑफ सेल पे जाने वाला है, आप बताइए क्या करना है। तो उस सिचुएशन पे आपको प्राइवेट फाइनेंसिंग वुड हेल्प यू टू सर्वाइव योर हाउस। अपनी फैमिली इतनी मेहनत करके जो घर बनाया है उसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना। घर में अगर इक्विटी आपके अप टू 80-85% घर के अंदर इक्विटी है और घर का मॉर्गेज बैलेंस थोड़ा कम है और 3-4 महीने की पेमेंट मिस करी है, आपके क्रेडिट कार्ड बिल बहुत ज्यादा है, सेकेंड मॉर्गेज ले रखी है और आप इस झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं, मैं आपको 3 से 4 हजार डॉलर की सेविंग करके बता सकता हूँ। प्राइवेट फाइनेंसिंग भी आगे जाके आप निकल के बाहर दोबारा रेगुलर मॉर्गेज भी आपकी हो सकती है। यू नीड अ प्रॉपर सोल्यूशन, स्ट्रेटेजी सोल्यूशन। वंस यू कॉल मी, वंस यू सेट अप अ मीटिंग विद मी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू गाइस। तो वंस अगेन, मैं मिसेस सागर हूँ, मिसेस सागर रोड एंड डेरी थे, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल 647-512-7000 647-512-7000। इसके अलावा घर की वैल्यू चेक करवानी, इवैल्यूएशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपकी वैल्यू चेक करके बताऊंगा, अपना नाम और घर का एड्रेस लिखकर भेजें, आई विल चेक द वैल्यू, आई विल गेट बैक टू यू। किरण जी, बैक टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी फ्राइडे।
0: बिल्कुल जी, हैप्पी फ्राइडे एंड थैंक यू मुकेश जी।
1: थैंक यू जी।
0: बिल्कुल जी। सो थोड़ी गलबात जी हो दस दी कि अज का प्रोग्राम असि नोबल फ्रैश फूड के सहयोग भी पेश कर रहे हैं। नोबल फ्रैश फूड तो जी सस्तियां ग्रोसरियां तुसी ले सकते हैं और तुसी बिल्कुल जी वीकेंड ते जाओ, कंपेयर जरा जी तुसी जितों भी ग्रोसरी लैनी तुसी खुद प्राइस कंपेयर करो कि नोबल फ्रैश फूड ते किन्नी सस्ती और घट प्राइजेस दे विच जी ग्रोसरी मिलती है। बहुत लंबी जी है जी इस टाइम मेरे को लिस्ट हैगी, सो हर चीज फ्रैश, सब्जियां, दालां, घे, दही, कुछ भी लेना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਨੰਬਰ 6474465050 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2: ਓ ਲੋਕੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਯਾਰ?
3: ਓਏ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
2: ਵਾਹ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਈ ਮੋਨਾ ਜੀ ਦਾ।
3: ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,
4: ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੋਰ ਯੂ ਦੀ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ।
3: ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-509-1509 ਤੇ।
4: ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੋਰ ਯੂ,
3: 416-509-1509
4: ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ insuranceforyou.ca।
5: ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ।
6: ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ?
7: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ।
8: ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਰੇ।
7: ਬਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ।
9: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ 11 AM to 6 PM ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% ਆਫ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-429-4040 647-429-4040 ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ।
10: ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਸ ਲਵ ਹੈ,
11: ਯੇ ਕਹਤੇ ਮੁਝਸੇ ਸਭ ਹੈ,
12: ਅਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ,

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 75 ਪਲੱਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫੁੱਲ ਔਨ ਟੇਸਟ ਦਾ ਕੰਬੋ 50 ਪਲੱਸ ਟੌਪਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਮੈਂਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਪੀਜ਼ਾ
3: ਜੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸੀ ਵਿੰਗਸ 25 ਫਲੇਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ
2: ਲੋਡਡ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ pizzadepot.ca ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ
3: ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ @pizzadepot.ca ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਪਿਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਟੌਪ ਟੌਪਿੰਗਸ ਨਾਨ ਸਟੌਪ
4: ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood Parkway East, 2 Sandalwood
5: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
6: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नायग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864
5: 905-358-0864 Dhaba on the Falls.
7: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nandaji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nandaji 647-822-9607
8: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
9: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो, इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है, ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
10: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
11: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
10: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: 32, 55, 80, 98।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

आसमां से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: Rockauto.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुने कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच ते चूहे, ओ हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डिया बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
4: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडी टू फ्राइडे 4-6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3-6 शामी, यानी कि देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है। ते नाल तुसी दुपहरे सरडे 1 तों लैके शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही काल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381, 416-457-3381, जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल काल करो 416-725-2551, 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तों सब डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो AM 530 ते